आई फेरी वरुण जी दृढ़ रूप धारी, पूजा करे निरपति जे गरी भक्ति बारी। विनती करे वरुण को सब दात आओस, यो पुत्र यज्ञ पशु लायक हो जाओ। दात नमृदिनु छैन बलि भनेर, देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्किआए, राजा खुसी भइ नुहारन।

0: कस्या माता कस्या पिता कस्या भाई कस्या श्रीमती कस्या छोरा
1: छोरा
0: कसो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

कश्मर गरी कुजरा सीता जी कण बेटी भरती कण बेरा भूमि कलम जल्दी गई सुरसा दिल्ली सामने हनुमान का।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

हार्दिक समवेदना। दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 निवासी तत्कालीन 2054 को गाविस अध्यक्ष 2000

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

मिकपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजाव भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शंख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिसमा सानन निलौ नागरी गोवर्धन हो तिरी रक्षे बलि दक्षे।